0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
4: 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
4: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
5: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। में आपका रेडियो दोस्त

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: नमस्कार दोस्तों, रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीना के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 75। आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो DS 89.6 ऐप डाउनलोड करें या YouTube पर radios_gg सर्च करें। क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है, बोलिए हम तैयार हैं।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: 89.6 पे रेडियो
1: डीएस सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकर हाजिर रहूंगा थोड़ी ही देर में आपका मन पसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों फिलहाल आप ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का पर, मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मीना।

0: हेलो
1: जी, गुड मॉर्निंग सर।
0: नमस्कार,
1: नाम बताएं सर आपका।
0: मोहम्मद हारून बोल रहे हैं, जिला विदिशा नगरी से।
1: मोहम्मद भी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप।
0: फिल्म का नाम है कैसे कैसे रिश्ते
1: जी,
0: फूलों से ज्यादा हंसी है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश कई बेहतरीन सर।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो सर
1: जी, नाम बताएं आपका।
0: मेरा नाम समता जाधव है सर, बाड़कला से बोल रही हूँ।
1: समता जाधव जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: मुझको सुनना है जेट की दोपहरी में गर्मी लगे है रानी।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं समता जी, आपकी फरमाइश पर।

0: चला चला चला बाजू आ जाओ।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
4: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का, में आपका

0: 99.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: जी नाम बताएं।
2: गुड मॉर्निंग सर।
1: आपका नाम बताएं।
2: सर नाम मोनिका सवाई माधोपुर।
1: मोनिका जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
2: बाबा ये नखरे लड़की।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश का।

0: जी नाम बताएं।
1: जी चौधरी निवेदन कर रहा हूँ आवेश।
0: चौधरी जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: बढ़िया गाना लेके आए सर आपके चैनल के लिए।
0: बताएं सर।
1: सोमवार को हम मिले।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का।
2: 89.6 पे रेडियो डीएस सुनते रहिए दिल से दिल तक। 89.6 डीएस एफएम पे हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है

0: आशीष मीना।
1: आशीष जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: लीला।
1: हाँ बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: याराना।
1: याराना सॉन्ग?
0: बेरी बेरी बेरी।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश पर ये बेरी सॉन्ग।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: हेलो हेलो
1: मैडम नमस्ते।
0: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
1: मैं आपको ब्रज मोहन महावर
0: जी कौन सा गाना सुनना?
1: वो क्या है विश्वात्मा का संती पांडे को सुनवाया गया था तस्वीर वह क्या तस्वीर में मतलब कुछ ऐसे पर मैं हूँ कहाँ मेरी ज्ञान है तू मेरे दिल में।
0: ओके सर सुना रहे हैं
1: तस्वीर तो है। हाँ तस्वीर तो है पर तस्वीर है कहाँ मेरी जान है तू मेरे दिल में। ओके, तो मेरी जान में।

0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: मोहम्मद यासीन।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: पाल से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: सुना जा मेरे बाद क्या।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।

0: नमस्ते।
1: नमस्ते मैडम। नमस्ते, रतनलाल बोल रहा हूँ पुलिस चौकी के पास से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: सामने तो आओ, चलिए चुप चुप चलने में क्या रहा है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का गाना।
1: ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
2: आत्मा की ये आवाज है।

0: 89.6
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6

0: TVS FM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: प्रीति मीना दीदी, राधे राधे।
2: राधे राधे जी, कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मैं जबलपुर से दीदी, गंगापुर सिटी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
1: मोहतरमा।
2: मोहतरमा,
1: हाँ जी।
2: ओके जी, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके।

0: हेलो
1: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मोनिका मीना, गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मोनिका जी?
0: मन में सुनिया सुनिया सी।
1: ओके मैम, सुना रही हूँ, आपकी फरमाइश करिएगा ना।

0: गुड मॉर्निंग दीदी।
1: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
0: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलू खेड़ा से।
1: फिर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: फिल्म का नाम है राजा जानी और गाने के बोल है आ आ आ जा, कुछ कह जा कुछ सुन जा।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मेरी सिस्टर।
1: यू वेलकम।

0: नमस्कार
1: सर, नाम क्या है आपका?
0: नाम बाबू खान है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सीकी लखनऊ की कोठी के पास।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: हमसे तो अच्छी तेरी पायल गोरी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं आपका।
1: गुलशन।
0: गुलशन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जंगापुर सिटी।
0: बताएं गुलशन जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: जब छुआ सजी सजी जावे।
0: दोबारा बताएंगे?
1: जब छुआ सजी सजी जावे।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी प्रोवाइड कर।

0: जी नाम बताए सर।
1: हाँ गुजर बोल रहा हूँ, बाला खड़ा।
0: हाँ गुजर जी बताए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल है।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी।

0: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: आसाराम जागा मेरा नाम।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी अम्बेडकर ग्राउंड।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: राधा की तमन्ना है, काना मुझे मिल जाए।
0: ऐसी सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: अक्षय बोल रहा हूँ।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: बजरिया से बोल रहा हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मेरा उस पार है मेरे में।
1: वो किसे सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना?
0: ओके ओके।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: सर नमस्ते।
1: नमस्कार दीदी, कैसी हैं आप?
0: ठीक है सर, आप कैसे हो?
1: हम भी ठीक हैं भाई। और कैसा मौसम है आपकी तरफ?
0: वही ऐसा ही हो रहा है, धूप तेज है।
1: अरे दीदी, तेज धूप है और गर्म गर्म हवा चल रही
0: है, बहुत गर्मी पड़ रही है इस टाइम में।
1: अब हर मौसम का अपना अलग अलग लुक होता है दीदी। गर्मी में गर्मी पड़नी भी चाहिए, सर्दी में सर्दी
0: तो अभी से बहुत ज्यादा पड़ रही है। जून में पड़ती है, मई में बहुत ज्यादा पड़ रही है,
1: लेकिन अप्रैल का और मार्च का महीना तो नवंबर के जैसा गया है, निकल के ठंडी हो गई थी काफी। चलिए तो गाना सुना दीजिए, ये इसका कयामत से कयामत तक फिल्म का
0: गाने की बोल।
1: ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम।
1: गुड मॉर्निंग सर जी। नाम क्या आपका?
0: हाँ, मेरा नाम है ये सलमानी मैम
1: जी। कहाँ से बात कर रहे हो सर?
2: मेरा नाम सुरेंद्र जैसी है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: अलीपुर में, गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: मैडम आज गाना सुनना चाहते हैं हमारे दोस्त, वही बताएंगे गाना कौन सा है।
1: हाँ जी बताइए।
0: हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम।
1: गुड मॉर्निंग सर जी। नाम क्या आपका?
0: हाँ, मेरा नाम है ये सलमानी मैम
1: जी। कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: मैं यही चूलीगढ़ गंगापुर सिटी से बात कर रहा हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: मैम आज वाला गाना सुनना चाहते हैं, बहुत जताते हो प्यार हमसे।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो
0: सर नमस्ते।
1: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें मैम।
0: सर नमस्ते। सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: आज जो गीत सुनना है पिक्चर का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का, जीत के बोल है क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रहते।
0: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: वेलकम।

0: हाँ नमस्कार।
1: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: लतीफ अहमद रैना, कश्मीर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: हाँ ये दिल हमारा।

0: हेलो।
1: हाँ जी हेलो।
0: सर नमस्ते।
1: जी नमस्ते।
0: जी नाम क्या है आपका?
1: जी मेरा नाम अमन गुजर है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: रेलवे कॉलोनी गंगापुर।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: दिल का जो हाल है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: Click on the bell icon to get regular updates from Venus.

0: हेलो
1: मैम नमस्ते। हेलो
0: हेलो
1: हाँ जी नमस्ते, नाम क्या है आपका?
0: निर्मला।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: जैस्मिन संधा झोल झोल
1: झोल
0: पिंजरा सुना दो।
1: हेलो

0: जम्मू से केशव शर्मा
1: जी। कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मैंने आज मुझे सुनना है काली गटा फिल्म का गाना है तू चली आ मेरी महबूबा तुझे दिल दूंगा तुझे जान।
2: सुपरहिट गाने इस चैनल पर ही है सुनहरे गाने और कुछ यादें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।

0: पप्पू।
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मोनिका।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: रेलवे कॉलर।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: तुम्हारो कौन लागे।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते, नाम क्या है आपका?
1: अभिषेक राजपूत।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: कष्ट।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: नाम?
3: हाँ जी,
2: सत्यनारायण।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: दूध की डेयरी करोली फाटक।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे? नहीं सर, 9:45 चालू हो जाते हैं गाने। बताइए।
2: तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: कोमल।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: दिल ये मेरा खो गया।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो,
2: हाँ जी।

0: नाम क्या है आपका?
1: नाम कुसुम मीणा।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: करौली।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: तेरा नाम मेरी है।

0: सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
0: बहू को? अभी दो दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
1: दो दिन? दो साल जैसा नहीं लग रहा। और बारिश भी आने वाली है।

0: तो सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा ना।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: आशीष मीणा।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: शेरा।
0: ओके, तो सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।

दोस्तों वक्त हो चुका है 12:20 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: तन्नु।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: दुपट्टे को संभाल सोनियो।
0: ओके मैम, सुखा रहे आपकी फरमाइश करिए गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो।
3: हेलो, हाँ जी मैम, क्या है?
4: भूपेश,
3: कहाँ से बात कर रही?
4: गंगापुर सिटी।

जब खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा

मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है, एक बज चुका है। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजी पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नहे तराने 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: 25 साल
1: ठीक है ना।

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 1:16 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम नए तराने। दोस्तों नए तरानों के बीचों में बातें करते हैं बड़े बुजुर्गों का गर्मियों में कैसे ख्याल रखना चाहिए।
1: बुजुर्गों का खास ध्यान रखना गर्मियों के मौसम में बुजुर्गों का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उनकी शरीर की ताकत और सहन क्षमता कम हो जाती है। उनकी देखभाल इस तरह की जा सकती है, समय पर पानी पिलाएं ताकि शरीर में पानी की कमी न हो, हल्का और पौष्टिक भोजन दें जैसे दाल फल हरी सब्जियां और दही, बहुत ज्यादा धूप में बाहर न जाने दें खासकर दोपहर के समय, कमरे को ठंडा और हवादार रखें, समय पर दवाइयां दिलवाएं और डॉक्टर की सलाह मानें, रोज थोड़ा टहलना या हल्की एक्सरसाइज करवाएं, उनसे प्यार से बात करें और उन्हें अकेलापन महसूस न होने दें, साफ सफाई और आरामदायक कपड़ों का ध्यान रखें, नींद पूरी हो इसका ध्यान रखें, अगर चक्कर कमजोरी या सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, बुजुर्गों की सेवा और सम्मान करने से उन्हें खुशी और सुरक्षा महसूस होती है।

0: थैंक यू सो मच फॉर सच अ मेमोरेबल ट्रिप.
1: थैंक यू सो मच.
0: सी यू. अरे अरे दो दो.
2: बाय.
0: अरे नो.

दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।

0: काहे तो बच चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहीं तराने। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे भूली विसरी यादें कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 3:00 इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे बैक टू बैक गाने का कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
3: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका

गुड इवनिंग दोस्तों, वक्त हो चुका है 4 बज चुके। इस वक्त आप मेरे साथ टून करे 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपके रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। आप थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपके मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: कर 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
3: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, में आपका

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है
2: दोस्तों। वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।
3: हेलो।
4: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
3: गुड इवनिंग मैडम।
4: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
3: नाम सोहेल जैसी।
4: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
3: गाजीपुर में, गंगापुर सिटी।
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
3: मैडम वहाँ सुनना चाहते हैं, तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है।
4: ओके, सुना रहे हैं आपको सर भाई।

0: शादर नमस्कार
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: मैं मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति, ब्रज रेडियो श्रोता मित्र मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति।
1: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: फिल्म का नाम बंधन।
1: गाने के बोल
0: टाइटल सॉन्ग सुना दीजिएगा।
1: बंधन का टाइटल सॉन्ग
0: जी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फिल्म।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मैम मेरा नाम पायल जागा है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: पिस्टल गैल वरिटा भी।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा।
0: थैंक यू मैम।

0: हाँ सर नमस्ते।
1: नमस्ते मैम।
0: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
1: विनोद कुमार सैनी, गंगापुर सिटी, मोकला।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैडम जाने मन चुपके चुपके मुस्कान मूवी का सॉन्ग है।
0: तो सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: नमस्ते
1: नमस्ते, चौधरी निवेदन कर रहा हूँ। अभी
0: हाँ जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: टेम्परेचर कितना चल रहा है जी?
0: क्या सर?
1: टेम्परेचर कितना हाई चल रहा है
0: सर? टेम्परेचर चल रहा है 42 डिग्री। हाँ जी,
1: चलो गाना ले।
0: हाँ जी बताइए सर।
1: गोरा मुखड़ा गुलाबी सुनरिया।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परिवार ने मुझे भी इसमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो हेलो
1: जी नमस्ते
0: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: ठंडीराम गुजर बोल रहा हूँ।
0: किसान से बात कर रहे हो?
1: गाँव में दरिया से बोल रहा हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: गाना ये वो

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते
1: नमस्कार
0: तो नाम क्या है आपका?
1: बाबू खान।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: चल के तेरे आँखों से शराब और ज्यादा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो नमस्कार।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: शामिल बोल रहा हूँ।
1: कहाँ से? हाँ जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाना है पाल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में।
1: कौन सा सर?
0: पाल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा ना।
2: फिल्मी गाने के नए वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम।
2: अरविंद जी
3: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
2: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
3: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: फिल्म का नाम है गहरी चाल और गाने की बोल है जयपुर की चोली मंगवा दे रे सैया।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद मेरी बहन।
3: थैंक यू सर।

सात मिनट का दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है मोनिका मीणा जी की। मोनिका मीणा जी ने हमें कॉल किया है सवाई माधेपुर से, सुनते हैं इनकी फरमाइश परिएगा 99.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो, गुड इवनिंग मैडम।
1: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम है अय्यूब सलमानी। मैं
1: दुकान से बात कर रही हूँ,
0: चूली गेट गंगापुर सिटी से। मैं
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आज गाना सुनना चाहते हैं, बहुत दिन हुए देखे हुए तुझे यार।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।
0: ओके मैम।
1: हेलो,

0: हेलो मैम।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मलिक सिंगर जी से बोल रहा हूँ। जीत फिल्म जी गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: जी जीत फिल्म से यार आओ यार।
1: ओके सर, तुम्हारी आपकी

0: हाँ जी।
1: हाँ जी सर नमस्ते, नाम क्या है आपका?
0: नाम गोलू है, गांव खेदरपुर, आपके से मिलकर गाँव।
1: फिर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.

दोस्तों 6:30 का समय होने वाला है। अभी आपने सुना हेलो फरमाइश कार्यक्रम, थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मनपसंद कार्यक्रम भजन संध्या। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: Jason. Radio Diaz.
1: दोस्तों रात्रि के 10 बज चुके हैं, लेकर हाजिर हूँ आपका मनपसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत।

दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में मेहमान के रूप में आए हैं निशा शर्मा जी और सुनते हैं उनके अच्छे और नेक विचार। संयुक्त परिवार और गर्मी के मौसम में महिला एक परिवार की देखरेख किस तरह करती है,

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में आए हैं निशा शर्मा जी एक मेहमान के रूप। निशा शर्मा जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्ते सर।
1: निशा जी, सबसे पहले तो हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपका परिचय जरूर बताएं।
2: हेलो दोस्तों, मेरा नाम निशा शर्मा है, मैं गंगापुर सिटी से बिलोंग करती हूँ।
1: निशा जी, आपने एजुकेशन में क्या कर रहा
2: है? जी सर, मैंने MA PGDCA MCA किया हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में मेरा अनुभव 10 साल का है।
1: क्या बात है। अच्छा, अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं आप?
2: जी, मैं बचपन पब्लिक स्कूल है अपना, उसमें मैनेजमेंट में हूँ।
1: अच्छा, मैनेजमेंट में कौन कौन से कार्य देखने होते हैं आप?
2: जी सर, उसमें बच्चों का पूरा देख रेख की जाती है, काफी सारे वर्क होते हैं।
1: अच्छा, आज हम आपके जो प्यारे प्यारे लिसनर हैं, हमारे जो राजस्थान और राजस्थान के अलावा सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, मतलब सारे क्षेत्र में सुने जाएंगे, तो इसके लिए हम बहुत सारे पारिवारिक जो गतिविधियां हैं उनका संचालन और उन चीजों का कार्यक्रम की देखरेख के माध्यम से चलते हैं। तो आज सबसे पहले आप हमारे जो श्रोता है उनको बताएं, गर्मी के मौसम में एक महिला की जो परिवार में देखरेख होती है वो कैसे रखें और परिवार स्वस्थ बना रहे?
2: वैसे तो सर काफी सारी चीजें होती हैं जो महिलाएं गर्मी में अपने परिवार का किस तरीके से ध्यान रखती है
1: जी,
2: बट मैं कुछ टिप्स आपको या दोस्तों को बताना चाहती हूँ जो मुझे सुन पा रहे हैं
1: जी।
2: फर्स्ट तो हमें घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: क्योंकि गर्मी में धूल, गंदगी और कीटाणु तेजी से फैलते हैं
1: जी,
2: इसलिए घर की नियमित सफाई करें
1: जी।
2: रसोई घर में पानी रखने के बर्तन और शौचालय को विशेष रूप से हमको साफ रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, शुद्धता है वह देवता भी वास करते हैं।
2: जी सर, जी सर। घर में पर्याप्त हवा और रोशनी आने की व्यवस्था की जाए।
1: बिल्कुल।
2: दूसरा, हमको स्वस्थ और शुद्ध पानी का उपयोग करना चाहिए, जो स्वच्छ पानी होता है हमारा।
1: बिल्कुल, तभी तन मन स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल
2: जी सर, बिल्कुल। गर्मी में शरीर को
1: बिल्कुल सभी सदस्यों को हमारे द्वारा बड़े बुजुर्ग चाहे बच्चे हो उनको पानी की भरपूर मात्रा दें।
2: जी सर, परिवार के सभी सदस्यों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी पीने के लिए प्रेरित करना चाहिए महिलाओं को।
1: बिल्कुल।
2: और पानी को हमेशा ढककर रखें, संभव हो तो उबाल कर या उसको फिल्टर करके यूज में लेना।
1: बिल्कुल, पानी से बहुत सारी बीमारियां भी होती है, तो अगर पानी जैसा आप बता रहे हैं अगर ऐसा पिया जाए एक बीमारी से भी बचा जा सकता है। छोटे छोटे बच्चे जैसे पेट की प्रॉब्लम या बड़े बुजुर्ग पानी कम पीते हैं तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। तो पर्याप्त मात्रा में सभी मेरे श्रोताओं को ये अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए।
2: जी सर, पौष्टिक भोजन हमेशा तैयार रखें
1: जी।
2: गर्मी के मौसम में हल्का और हमको पौष्टिक भोजन लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। देखो, खाना समय समय पर, और एक चीज मैं बताऊंगा निशा जी हमारे सुनने वाले श्रोताओं को कि जब भी हम धूप में निकले उससे पहले खाना खा के निकले बाहर, यानी 10 या 11 बजे से पहले पहले गर्मियों में तो काम कर लेना चाहिए बाजार का, और 11 बजे बाद तो निकलना नहीं चाहिए। और यदि ज्यादा जरूरी हो तो गमछा, स्कार्फ आदि लगा के निकले।
2: जी सर, गर्मी में सबसे ज्यादा हमको दही या छाछ, सलाद और अंकुरित अनाज को उपयोग में लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत
2: अच्छा। तला और भुना मसालेदार भोजन हमको कम उपयोग में लेना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। देखो, मसालेदार अगर ज्यादा मसाले खाएंगे तो गर्मी में हमारी बॉडी को दिक्कत हो सकती है।
2: जी सर,
1: इसलिए जितना हो सके छाछ, दूध और भोजन में हम खरबूजे, तरबूज, नारियल पानी और जो भी फल फ्रूट ले सकते हैं।
2: भोजन को हमेशा सुरक्षित रखें क्योंकि गर्मी में भोजन जल्दी खराब हो जाता है।
1: अच्छा अच्छा।
2: बचा हुआ भोजन को हमेशा ढककर रखें, समय पर उसका उपयोग करें। खराब या बासी भोजन खाने से हमको फूड पॉइजनिंग हो सकती है।
1: बिल्कुल सही बात है। तो भोजन को हम कोशिश यही करें परिवार के सभी सदस्यों को सुबह, शाम या दोपहर का जब भी लेते हैं तो ताजा भोजन बनाते समय ही खा लेना चाहिए।
2: जी सर, बिल्कुल। दोस्तों, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना चाहिए गर्मी के मौसम में।
1: बिल्कुल सही बात है। छोटे छोटे बच्चे तो टाइमिंग नहीं जानते कि कब पानी पीना है, कब खाना खाना है, तो उनको तो महिलाएं ही बताएगी ना कि कौन से समय पर उनको भोजन देना है। और देखो, महिला जो एक परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है, महिला चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, उनको महिलाएं चलाती है, जब भी तो महिलाओं को गृह मंत्री कहा जाता है।
2: जी सर, बिल्कुल।
1: अच्छा, और कौन से टिप्स हैं?
2: जी सर, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, दिन में कम से कम एक बार स्नान करें।
1: जी।
2: हमेशा हाथों को साबुन से धोने की आदत डालें।
1: बिल्कुल, बहुत।
2: विशेषकर भोजन बनाने और खाने से पहले, ताकि कोई भी कीटाणु हमारे अंदर ना जाए।
1: बिल्कुल सही है, कीटाणु अगर आएंगे तो हमारे जो शरीर की एक्टिविटीज है उनमें जाएंगे और हमें बीमार या रोगाणु ग्रस्त कर देंगे।
2: जी बिल्कुल, हीट स्ट्रोक से बचाव, दोपहर के समय तेज धूप से बाहर जब भी हम निकलते हैं, यदि बाहर जाना हो तो उनको छाता या टोपी या गमछे का उपयोग हमेशा करना चाहिए।
1: बिल्कुल निशा जी, बिल्कुल सही बात बताई आपने। जब भी हमको बाहर निकलना होता है तो हम सबसे पहले हमारी जो तेज धूप होती है या लू के जो थपेड़े होते हैं, इनसे सुरक्षा करना बहुत ही जरूरी होता है और हमें करना भी चाहिए। कभी भी हम कूलर की ठंडी हवा में या एसी की हवा में बैठे हैं तो तुरंत धूप में नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो चक्कर आने की प्रबल समस्या रहती है। और कोशिश यही करें कि हम ज्यादा से ज्यादा छाया में चलें, छाया में काम करें।
2: जी सर बिल्कुल, नींबू पानी समय समय पर लेते रहें, नारियल पानी जैसे भी हमारे पेय पदार्थ, उनका उपयोग हमको ज्यादा करना चाहिए,
1: बिल्कुल सही,
2: ताकि हमारा शरीर हमेशा ठंडक प्रदान करे।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे नियमित श्रोताओं को दी निशा जी, आप कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: जी सर।

0: आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़े धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करके लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे मशहूर हस्तियों या सरकारी नेताओं के डीप फेक वीडियो बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति आपको निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। निवेश चाहे शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, सोना या कोई भी हो, गारंटीड रिटर्न का दावा हमेशा धोखा होता है। ठग आपको फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर पैसा डालने के लिए कहते हैं। वहां आपको दिखाया जाता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में सारा पैसा धोखेबाजों के खाते में चला जाता है। याद रखें, न कोई सेलिब्रिटी और न ही सरकार कभी भी किसी निवेश पर गारंटीड रिटर्न की गारंटी देती है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। संक्षिप्त और प्रभावी रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो बताएं, मैं और छोटा स्लैश और भी आकर्षक संस्करण भी बना सकता हूं।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में कार्यक्रम में पधारे हैं निशा शर्मा जी। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी।
1: नमस्ते सर।
0: निशा जी, सबसे पहले तो हमारे सभी सुनने वाले प्यारे प्यारे भाई और बहनों को आपका परिचय जरूर बताएं।
1: जी सर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम निशा शर्मा है। मैं गंगापुर सिटी से हूँ, शिक्षा के क्षेत्र से हूँ मैं, और मेरे को शिक्षा के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है।
0: अच्छा, आपने एजुकेशन में क्या कर रखा है? सबसे पहले हमारे श्रोताओं के मन में एक भाव होता है कि उन्होंने क्या कर रखा है।
1: जी सर, मैंने एमए पीजीडी से एमसीए किया हुआ है।
0: अच्छा निशा जी, आप महिलाओं के बारे में एक चीज हम चर्चा में रखेंगे आज। महिलाओं में जो संयुक्त परिवार की जो रीढ़ की हड्डी होती है, संयुक्त परिवार बनाने में या बिगाड़ने में, उस पर चर्चा करेंगे। तो आप बताएं कि महिला एक अटूट स्तंभ बनकर एक संयुक्त परिवार को कैसे बनाए रख सकती है।
1: जी सर, महिला को संयुक्त परिवार में रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। जो एक महिला होती है वो ही अपने परिवार को संयुक्त परिवार में जोड़ सकती है।
0: हाँ।
1: जैसे भारतीय समाज की नींव संयुक्त परिवार की व्यवस्था रही है।
0: बिल्कुल।
1: इस व्यवस्था में कई पीढ़ियां एक छत के नीचे रहती आ रही थी।
0: बिल्कुल।
1: एक दूसरे के साथ रहती हैं, एक दूसरे के सुख दर्द को बांटती हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन इस पूरे ढांचे को मजबूती से संभाले रखने का काम करती है वो एक महिला होती है।
0: एक महिला, बिल्कुल।
1: वह घर की हमारी एक रीढ़ की हड्डी होती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसके बिना पूरा परिवार अधूरा है। वो संयुक्त परिवार की आत्मा मानी जाती है।
0: बिल्कुल।
1: संयुक्त परिवार की आत्मा, जैसे कि संयुक्त परिवार में सिर्फ एक घर नहीं होता बल्कि एक जीवन प्रणाली होती है।
0: जी।
1: जिसमें दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, भतीजे भतीजियां सब एक साथ मिलकर रहते हैं। इस जो प्रणाली में हर व्यवस्था की अपनी एक भूमिका होती है।

0: महिला बहुपत्नी माँ बहु और बेटी के रूप कई प्रकार की भूमिकाओं को एक साथ निर्माण करती है,
1: अदा करती है। बिल्कुल
0: जी सर। सुबह सबसे पहले वो उठती है, चाय बनाती है, नाश्ता तैयार करती है, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है
1: जी।
0: बड़ों की दवाइयाँ देती है, पूजा पाठ करती है
1: जी।
0: और फिर पूरे घर का कामकाज अकेले ही संभालती है। शाम को जब सब थक कर घर पर आते हैं तो वह उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का जादू करती है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि उनके लिए गर्म खाना बनाना, मीठी मीठी बातें करना और कभी कभी चुपके से सुन ली जाने वाली सारी परेशानियों को समझती है।
1: बिल्कुल
0: जी सर। महिला भावनात्मक रूप से मजबूती की आधारशिला मानी गई है
1: जी।
0: जैसे कि दोस्तों, संयुक्त परिवार में सबसे बड़ी चुनौती समायोजन की होती है
1: जी।
0: अलग अलग स्वभाव रखने वाले, अलग अलग सोच रखने वाले, अलग अलग पीढ़ियों की सोच को एक साथ कर बांध कर रखना आसान नहीं होता। इस काम को सबसे अधिक कुशलता से सिर्फ महिला ही कर
1: सकती है। बिल्कुल सही बात कही है आपने निशा जी।
0: जब वे नई नई घर में आती है तो वे सिर्फ पति पत्नी नहीं बनती, पूरे परिवार की बहू बनती है
1: जी।
0: वे सास की आदतों को समझती है, जेठानी के साथ वो तालमेल को बिठाती है,
1: पूरे सभी परिवार के सदस्यों की हैबिट को जानकर और उनके अनुसार वो अपने आप को ढाल लेती है। बहुत बड़ी बात होती है।
0: बच्चों को संस्कार सिखाती है, बूढ़े माता पिता को संतान का स्नेह देती है। जब परिवार में कोई तनाव होता है तो अक्सर वही चुपके से सबको समझाती है
1: जी।
0: वो परिवार पर घाव पर जैसे मेहरम किया जाता है, इस तरीके से परिवार के लिए महिला को माना जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताया आपने। एक संयुक्त परिवार जोड़ने में महिला की कितनी भूमिका रहती है, अनगिनत जो शब्द आपने बताए हैं। मैं तो यही चाहूंगा और सभी सुनने वाले भाई बहनों को यही कहूंगा कि आप अधिक से अधिक संयुक्त परिवार रहने का प्रयास करें
0: जी सर। आजकल महिलाएं जैसे कि आर्थिक और प्रबंधन कौशल में भी निपुण मानी गई हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज के समय में बहुत सी महिलाएं हैं जो घर संभालने के साथ साथ नौकरी भी करती हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन संयुक्त परिवार में उनका योगदान सिर्फ आय तक सीमित नहीं होता है
1: जी,
0: अपितु वे अपने बजट बनाती हैं, घरेलू खर्चों का हिसाब भी रखती हैं, घर का राशन अनाज की व्यवस्था भी करती हैं, बच्चों की पढ़ाई का भी विशेष ध्यान रखती हैं और बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखती हैं। संयुक्त परिवारों में महिलाएं छोटे मोटे व्यवसाय भी चलाती हैं, जैसे कि ट्यूशन भी पढ़ाती हैं, बुटीक खाने पीने का सामान बनाना, हैंडीक्राफ्ट आदि। जैसे कि इस तरह से वे अपने परिवार की आर्थिक मजबूती को भी बढ़ाती हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है।
0: उनके जीवन में चुनौतियां भी कम नहीं होती हैं।
1: बिल्कुल, एक परिवार को संभालने के लिए तो मतलब वो परिवार की एक ड्राइवर होती है, मतलब एक संचालक होती है, तो चुनौतियां तो हर बात को उन्हीं को झेलनी होती है
0: जी सर। सच तो ये है सर, संयुक्त परिवार की रीढ़ होने का बोझ भी बहुत भारी होता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि लगातार काम करना, जिम्मेदारियों का निर्वहन करना
1: जी,
0: अपनी इच्छाओं को खुद दबाकर अपने परिवार को प्राथमिकता देना।
1: बिल्कुल सही बात।
0: कभी कभी व्यक्तिगत सम्मान और स्वतंत्रता भी उनसे छीन ली जाती है।
1: बिल्कुल सही है, कई परिवारों में महिलाओं की ऐसी स्थिति भी बनी रहती है। पंडित सर जी, आज मैं जहाँ तक समझता हूँ आज के इस डिजिटल युग में ऐसी परिस्थितियाँ कुछ ही घरों में देखने को मिल सकती है
0: जी सर। फिर भी ज्यादातर भारतीय महिलाएं इन चुनौतियों को चुपचाप सह लेती है
1: जी,
0: क्योंकि उनके लिए अपने परिवार की खुशी ही अपनी खुशी होती है।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: बदलते समय में प्रशांतिकता, आजकल न्यूक्लियर परिवार बढ़ रहे हैं, लोग स्वतंत्र रहना ज्यादा पसंद करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: एकल परिवार में जिसमें सिर्फ अपने पति पत्नी और अपने बच्चों का साथ हो, लेकिन संयुक्त परिवार की कमी आजकल महसूस की जा रही है। बुजुर्ग अकेले पड़ रहे हैं
1: जी,
0: बच्चे संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं
1: जी,
0: और भावनात्मक जो सुरक्षा होती है उसका अभाव साफ दिखाई दे रहा है सर। ऐसे में महिलाएं अगर संयुक्त परिवार की मजबूती को बनाए रखें तो समाज की जड़ें मजबूत होती जाएंगी
1: जी।
0: जो नई पीढ़ी आने वाली है, महिलाएं अगर पुरानी रीढ़ की पीढ़ी के अनुभव को सम्मान दें और नई सोच को जगह दें तो संयुक्त परिवार का भविष्य और भी उज्जवल हो सकता है।
1: बिल्कुल निशा जी, आपने संयुक्त परिवार के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप हमारे स्टूडियो में आए और कार्यक्रम में हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद।

दोस्तों रात्रि के 11 बजने वाले हैं और आज की सभा का यही समापन करते हैं। आपके रिसीविना को दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुबह 6 बजे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।